जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। 10:31 हो चुके हैं और आपको तो पता ही है कि ये है दिल का मेल बॉक्स। व्हाट्सएप नंबर बता दूं 9868867353, जिस पर आप हमें अपनी फरमाइश भेज सकते हैं, यानी 9868867353, और ईमेल आईडी fmgoldaiardelhi@gmail.com। जी हाँ, fmgoldaiardelhi@gmail.com। देखिए, बिना समय गवाए मैं कितनी जल्दी जल्दी काम करती हूँ ना, और आपके बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे पास जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं, तो चलिए कुछ को शामिल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। उदयवान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल का हमें मैसेज मिला है। दिव्यांश बघेल और परिवार के साथ कहां से, ग्राम रजौनी, जिला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से। और हमें किसने लिखा है ये मैसेज, हमें मिला है योगेश शर्मा का, फरीदाबाद से। साथ ही हमारे पास रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता का ओखला संगम विहार दिल्ली से मैसेज पहुंचा। उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव गरिमा ने हमें नई दिल्ली से लिखा है। और उषा बुरांडे, अनुश्री, धनश्री, अनिल बुरांडे ने हमें लिखा है जिला यवतमाल से। और जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन दीपांशु का हमें मैसेज पहुंचा है, कहां से, होली चौक उत्तम नगर से। और इसके अलावा गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका, वाणी थांदी का हमें मैसेज पहुंचा है नवा शहर पंजाब से। मुंबई से अनु बरजात्या, शमसुल खान, अनुराज बेनारा का हमें मैसेज पहुंचा, पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल का हमें मैसेज पहुंचा, नलेश्वर नगर, नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर महाराष्ट्र से, नारायण इंगले, सोपान ताइड़े और आशीष मोहरकर का मैसेज। और सुदर्शन शाह,

पल्लवी शाह प्रखर, कुशल नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी ने हमें लिखा है पद्मा टोकीज नेपानगर से। कृष्णा पार्क दिल्ली से हमें लिखा है सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना। पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबरॉय का मैसेज। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा ने हमें लिखा है मजनू का टीला से। और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सर अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सदाम कामे, सहारनपुर कुमार हेड़ा से मैसेज पहुंचा। संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे हमें शाहजीनगर देगलूर नांदेड़ से लिख रहे हैं। और सुधाकर, श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, जगुताई राजेश जाधव और कुमार संचित, प्रथमेश, सर्वद हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख का हमें मैसेज पहुंचा है। पूरे परिवार के साथ हमें सुन रहे हैं और हमें लिखा है कहां से, कालेगांव जाफराबाद मराठवाड़ा से। और ये मैसेज हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से, ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू का। श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ का हमें जगदीश धाकड़ के साथ मालवा से पहुंचा है ये आलोट जिला रतलाम एमपी से मैसेज। और हमें लिखा है किसने, आर्य नगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल ने। और धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका और अंजलि रंगील ने। और सलीम अख्तर, रेशमा बेगम का अलीगढ़ से मैसेज। और ये मैसेज एम खलील कुरैशी, नुसरत बेगम बेबी अरीबा हबीबा का पटियाला रोड गंजरुनवाड़ा उत्तर प्रदेश से मैसेज। मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, नशा नवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अपान और पूरे परिवार का मैसेज हमें मिला है अपर कोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से। इससे पहले कि और मैसेजेस को शामिल करूं, एक गीत को शामिल कर लेते हैं। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है कहां से, सुषमा अनन्या, राजवीर गायकवाड़, सुनील पुणे से, महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत हिम्मत फिल्म से।

मैं आपके मैसेजेस तो मैं जरूर शामिल करूंगी, गीत भी शामिल होंगे, लेकिन एक जरूरी सूचना आप तक पहुंचा दूं कि एक महिला मरीज के लिए 2 यूनिट रक्त की तत्काल आवश्यकता है। धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, धर्मशिला मार्ग वसुंधरा इंक्लेव में, और दलूपुरा नई दिल्ली में। यहां पर आप पहुंच जाइए, अगर आप इस जगह के आसपास हैं, न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के करीब ये जगह है, और अस्पताल के आसपास रहने वाले इच्छुक रक्तदाताओं से विनम्र अनुरोध है कि आगे आकर रक्तदान करके मरीज की मदद करें। तो अगर आप इस एरिया के आसपास हैं तो जरूर पहुंच जाइए। मैं आपको संपर्क नंबर भी दे दूं, कॉन्टैक्ट नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 888-4447-99 888-4447-99। ये नंबर है जिस पर आपको कॉल करना है। एक बार फिर से बता दूं, 888-4447-99। आपका रक्तदान किसी के जीवन की उम्मीद बन सकता है, तो बिल्कुल मत चूकिए। अगर आप इस एरिया के आसपास हैं तो जरूर पहुंच जाइए और इस पेशेंट की मदद आप कर सकते हैं। धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, धर्मशिला मार्ग वसुंधरा इंक्लेव, दलूपुरा नई दिल्ली में, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, एक बार फिर से बता दूं, न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास। तो ये तो हुई बात जो आपको मदद करनी चाहिए किसी की आगे बढ़कर, अगर आप कर सकते हैं तो जरूर आगे आना चाहिए। फिलहाल मैं कुछ मैसेजेस को भी शामिल कर लूं। हमारे बहुत सारे श्रोता हमें सुन रहे हैं और हमें मैसेज भेजा है। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश ने, और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार ने, और अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमार, निवेश कुमार, नियति कुमारी, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से हमें लिख रहे हैं। साथ ही हमारे पास हरी प्रसाद विश्वकर्मा, कॉलेज रोड गरोड जिला से हमें मैसेज पहुंचाया है और लिखा है कि आज नेत्रदान की जानकारी उन्हें मिली कार्यक्रम के जरिए हमारे पिछले प्रोग्राम में, और उन्होंने फैसला किया है कि वो भी नेत्रदान जरूर करेंगे। मंदसौर मध्य प्रदेश से इनका ये मैसेज है। तो बहुत बहुत अच्छी बात है अगर आप हमें सुनकर ऐसे कोई भी फैसले लेते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ओम प्रकाश तेगचंदानी का हमें ग्रेटर कैलाश से मैसेज पहुंचा है और हमें लिखा है उत्तम इनका मैसेज तो मैं शामिल कर चुकी हूँ। कोपर गांव से सुरेश मालोड, वर्षा मालोड, और शेव गांव से हमें लिखा है श्रीराम गोंदली, उषा गोंदली ने, अफरोज शेख पता नेमुआ सुपौल बिहार से हमें लिख रहे हैं, और मुंबई से भी ये मैसेज हम ले चुके हैं। मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत, सादिया का हमें मैसेज मिला है गिरडी झारखंड से, और हमें लिखा है मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, सुरेश, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह ने दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना ने,

जिला खरगोन सनावत से सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु और मुकेश जगताप का मैसेज महेश संघई रुपेश प्रगेश प्रतेश संघई का महाराष्ट्र से पूरे परिवार के साथ हमें सुन रहे हैं और इसके अलावा हमें पीएस नावकर निर्मला नावकर विशाल नावकर का नलेश्वर नरवेल महाराष्ट्र से मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले सोपान दाड़े आशीष मोहिरकर मुझे लग रहा है ये मैसेज मैं ले चुकी हूँ दोबारा मत करिए सिद्धार्थ गुंडाने अर्चना ताई गुंडाने हीरामणि शेंडे प्रणय प्रसिद्धि प्रतिभा गुंडाने का हमें मैसेज पहुंचा है अमरावती महाराष्ट्र से और हमें लिखा है बबलेश पवार डैनी पवार मनीष पवार ने खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा से रामदेवरा से दिनेश चौहान ने डागरी बाबू डागरी से बाबूराम जयपाल ने हमें लिखा है मैसेज गांधी चौक बाड़मेर से भी इनके मैसेज हैं भाई बहुत कंफ्यूजन है आपके मैसेजेस में थोड़ा डिस्टेंस देके लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि कहां से कौन लिख रहा है सोनाली सुरेश नारंग सहारनपुर से हमें मैसेज भेज रहे हैं और आशा नारंग है इनके साथ हमें सुन रहे हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर रतनमाला ओम सुरलकर का मैसेज मोहम्मद कलीम अंसारी जहीरा बेगम अंसारी मोहम्मद अयान उस्मान और यासीन हाशमी का हमें मैसेज पहुंचा है गंजरुड़वाड़ा कासगंज से कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान फैजी फराज फरहीन फरान और फारिया ताहिरा का मैसेज हमें मिला संदीप मक्कर ज्योति मन्नत भरत का हमें मैसेज पहुंचा है कमल सानी पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से हमें लिख रहे हैं और पंकज मोहड़ ने अमरावती महाराष्ट्र से लिखा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा पूनम विशाल प्रिया दिशानी और निमिता आहुजा का मैसेज निमित आहुजा का मैसेज और नबी हसन अब्बासी शाहनवाज नवेद हसन सुहेल हसन अनम यशफ का हमें मैसेज मिला है दरवाजा एटा मारहरा से किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान सबीहा जुबैर और अंजुमन खान का हमें मैसेज मिला साथ ही हमें प्रकाश गोगिया ने लिखा है दिल्ली से और अगर आप नाम पूरा लिखेंगे तो हम यकीनन आपका नाम पूरा ही पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर आपने आधा लिखा होगा तो जरूर आधा पढ़ा होगा मोहम्मद कलीम अंसारी जहीरा बेगम अंसारी मोहम्मद अयान अंसारी मोहम्मद उस्मान अंसारी का हमें गंज टुंडवाड़ा से मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा कीर्ति भूमिका का मैसेज पदमपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से रणधीर गुप्ता बबीता रानी गुप्ता सत्यम गुप्ता सुंदरम गुप्ता का ओखला संगम विहार से ये शायद फिर से मैसेज भेज दिया है आपने अरुण गुप्ता मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता का राजनगर गांधी चौक मधुबनी से हमें मैसेज मिला टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप का चंडीगढ़ मोहाली से और शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज पिट्टा बजाज का हमें मैसेज पहुंचा है कालका से बाकी के मैसेजेस को जरूर शामिल करने की कोशिश रहेगी लेकिन फिलहाल आपका पसंदीदा गीत तो अब ये गीत किसकी फरमाइश है सलीम अख्तर रेशमा बेगम ने अलीगढ़ से इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है ये रहा आपकी पसंद का गीत अनवर साहब की आवाज़ में

और अब कुछ और मैसेजेस को भी शामिल कर लेते हैं। हमें सतीश अनेजा, विमला अनेजा ने लिखा है चंडीगढ़ सिटी से, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा का मैसेज, धनोरा विटाली से, तहसील नांदुरा जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल का मैसेज, तुलसी मस्कीन, वीना आशीष, चैतन्य मस्कीन का हमें मैसेज, मेघा मस्कीन, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशवरिधान खुराना का मैसेज हमें मिला है, बिहारी कॉलोनी दिल्ली शाहदरा से, और भवपुर बसना से चंपा देवांगन, राधे श्याम, नेहा राजू, जगदीश देवांगन का मैसेज, पारसमणि वर्मा, हीरामणि, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा, दत्तरिंगी भाटापारा से हमें लिख रहे हैं, और साथ ही हमें लिखा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी ने, और ये मैसेज हमें मिला है रेखा चिक, रमेश चिक, नरेश चिक, रचना, पूजा, ज्योति, संगम विहार, हनुमान मंदिर से हमें लिख रहे हैं, और साथ ही हमें आपके जो मैसेजेस है वो लिखने का तरीका थोड़ा सा बदलिए, एक नाम के नीचे दूसरा नाम, फिर ऐसे करके आप लाइन से नाम लिखें तो हमें पढ़ना आसान होगा, बहुत मुश्किल होती है पढ़ने में। राजेश वर्मा, राजेश राज वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा का हमें मैसेज पहुंचा है, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा, मुन्ना भाई स्वर्णकार का हमें, हकीकतपुरा मऊ से हमें शिव मंदिर से मैसेज पहुंचा है पीहू स्वर्णकार के साथ, अभिजीत गवाणकर और गवाणकर राही, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश और अर्जुन गवाणकर का हमें डुगू के साथ मैसेज पहुंचा है, उमरखेड़ महाराष्ट्र से, मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतनमाला ओम सुरलकर का मैसेज, और ये मैसेज हमें मिला है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, पविता, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का, और इसके अलावा हमें लिखा है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन।

0: का कजरा अखियां मलते मलते नैना मारा।
1: और अब जल्दी से कुछ और मैसेज ले लूं। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का मैसेज शांति नगर से हमें मिला है। रामगंज खंडवा से विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, संजय मारकंडे का मैसेज, और हमें लिखा है जगदीश कुमार, राहुल ऋतिका ने कहां से नहीं पता। और इसके अलावा हमारे पास अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर मुजक्किर, जफीर अंसारी का मैसेज पहुंचा है दाऊद सराय सहारनपुर से, और हमें लिखा है सतप्रकाश गोयल, रेणु गोयल, विद्युत गोयल ने रोहिणी दिल्ली से। साथ ही हमारे पास मनोहर लाल गांधी का विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से मैसेज, और लिखा है मेरे पति फौज में है, 3 साल से घर नहीं आए, उनकी याद में आप एक गीत सुनना चाहती थी पर सॉरी आज वक्त नहीं बचा है, लेकिन फिर किसी रोज जरूर मैं आपको एक गीत सुनाऊंगी। शगुन त्रिपाठी ने दिल्ली कैंट से हमें ये मैसेज भेजा है। और साथ ही हमारे पास राजेंद्र कुमार सचदेवा भवानीगढ़ पंजाब से हमें मैसेज लिख रहे हैं, और भी ढेर सारे मैसेज हैं लेकिन वक्त नहीं बचा है अब दोस्त, तो मुझे अब आपसे इजाजत लेनी होगी फिलहाल के लिए, पर ये वादा रहा 11:10 पर फिर से मिलूंगी लेकर तस्वीर, जुड़िएगा जरूर, कोशिश तो रहती है सबको निराश ना कर पाऊं, करूं अच्छे से खुश रखूं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चूक जाता है। खैर आप समझते हैं मैं जानती हूं। तो दिल का मेल बॉक्स में इतना ही, फिलहाल वक्त है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा राजनयिकों से विदेशों में नियुक्ति पर जमीनी स्तर पर जुड़ाव को मजबूत बनाने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में भारतीय विदेश सेवा के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने नेटवर्क का विस्तार करने और लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करे। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का एआई आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र

0: वारंट जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापानी भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हांग झेंग से भी मुलाकात करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल दो दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी व्हीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रवाना होंगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय संबंध मजबूत करना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में तीसरे दिन का खेल जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service, IFS, at Seva Tirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. Mr. Modi encouraged the officer trainees to combine India's civilizational strengths with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global engagement. The Prime Minister also called upon the officer trainees to serve as catalytic agents for the country's economic engagement with the world. Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center MSC platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. To effectively tackle terrorism and radicalization, Mr. Shah emphasized training for implementation of the Home Ministry's Prahar scheme, expediting trials by bringing back fugitives and utilizing trial and absentia provisions, and undertaking a comprehensive and integrated approach while investigating UAPA cases. The Unified Payments Interface, UPI, has completed 10 years of transforming digital payments and has emerged as a backbone of India's digital payments ecosystem. The UPI, which was launched on 25th of August 2016, has surged almost 13,000-fold in transaction volume. We have more from a correspondent.
2: The Finance Ministry said that the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The Ministry said that UPI has also emerged as a global platform for cross-border digital payments and is currently operational in 11 countries. UPI has emerged as one of the most successful pillars of India's digital public infrastructure, providing an interoperable real-time payment platform. Vishal Kumar, Akashvani, New Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of service of Unified Payment Interface. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling the countrymen to share the UPI experience, he stated that the sheer scale and reach of UPI is something

दोस्तों, जो लोग घूमते फिरते हैं, जो लोग अपने घरों से निकलकर बाहर दूसरे शहरों की सैर करते हैं या दूसरी जगहों पर जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, सच मानिए कि वो लोग वैसे नहीं होते जैसे वो लोग होते हैं जो घरों में बंद रहते हैं या ज्यादा लोगों से नहीं मिलते या ज्यादा घूमते फिरते नहीं है। उसके पीछे एक वजह है, जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना तो सचमुच अचानक से बहुत सारी चीजें बदलती हैं। कभी मौसम बदल जाता है तो कभी आपका टूर का टाइम बदल जाता है तो कभी अचानक से कोई ऐसी तकलीफ सामने से आ जाती है कि आपको शायद समय पर नाश्ता ना मिले, शायद समय पर खाना ना मिले, या फिर वेदर कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं कि अचानक से बारिश हो जाए, अचानक से तेज धूप हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप अचानक प्लेन्स में चलते चलते पहाड़ों की चढ़ाई आपको करनी पड़ जाए। तो ऐसे लोग जो हमेशा घूमते फिरते रहते हैं वो ऐसी चीजों को जल्दी से अपना लेते हैं, और ऐसे लोगों को भी जो बहुत उतार चढ़ाव जिंदगी में लाने वाले होते हैं या फिर जिन्हें ये समझ नहीं आता कि रिश्तों को प्यार से कैसे निभाना है, तो ऐसे लोग ये जानते हैं कि रिश्तों को कैसे निभाना है, क्योंकि अलग अलग जगह पर जाकर जब हम अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं तो हम ये सीखते हैं, हम ये जानते हैं कि लोगों का, हर एक का बात करने का तरीका अलग होता है, हर एक का मिलने का तरीका अलग होता है, हर एक का खान पान अलग होता है, पहनावा अलग होता है, संस्कृति अलग होती है, और इसीलिए घूमना फिरना बहुत जरूरी है। जब आप बाहर निकलेंगे, जब आप अपने शहर से बाहर जाएंगे तो आप नए नए लोगों को जानेंगे, नए लोगों के विचारों को जानेंगे, और फिर ये कहीं ना कहीं आपको भी एक अलग ही सुकून देगा, जानकारी देगा, आपके माइंड को थोड़ा और ब्रॉड करेगा। तो कभी भी अगर आपका मन अशांत हो, अगर आपको लगता हो कि

0: मन में थोड़ा चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है तो कहीं भी घूमने का प्लान कर लीजिए। फिर देखिएगा कि हमेशा की तरह से जो आप बोरियत महसूस करते हैं, आपका हमेशा के लिए मन तरोताजा हो जाएगा। और थोड़े थोड़े दिन में ना घूमने की प्लानिंग करते रहना चाहिए। तो चलिए, अगर आप कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरे साथ चलिए। आज मैं आपको ले चल रही हूँ बिहार के पटना। दोस्तों, बिहार का पटना यानी बिहार की जीवंत राजधानी पटना इतिहास, सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिकता से ओतप्रोत एक गंतव्य है। अपने दिलचस्प अतीत, पवित्र स्थलों और अद्भुत स्थापत्य कला के साथ पटना यात्रियों को एक मनोरम अनुभव देता है। पटना टूर पर जाना इस प्राचीन शहर के छिपे हुए रत्नों को खोजने और इनकी अनूठी विरासत में डूबने का एक बेहतरीन मौका है। चाहे आप इतिहास प्रेमी हो, आध्यात्मिक साधक हो या बिहार की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो, पटना में हर तरह के यात्रियों के लिए कुछ न कुछ जरूर है। तो आज हम आपको तस्वीर के सफर में ले चलेंगे पटना की सैर पर। जुड़े रहिएगा मेरे साथ इस सफर में 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 11:14 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आर्चरेखा, क्रिस्टल वॉइस। ये सफर है तस्वीर का।
1: ओखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

चलिए अब आपको ये बता दूं कि पटना पहुंचना कैसे है। आप हवाई जहाज, ट्रेन, सड़क या जलमार्ग से पटना पहुंच सकते हैं। सबसे आम तरीके हवाई जहाज और ट्रेन है। पटना का अपना हवाई अड्डा है और ये प्रमुख रेल हब भी है जो इस देश के ज्यादातर शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आप लोकनायक जयप्रकाश हवाई अड्डे पर उतर सकते हैं जो शहर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद जैसे कई शहरों से सीधी उड़ाने यहां उपलब्ध हैं। और अगर बात करूं ट्रेन से यहां पहुंचने की तो पटना जंक्शन जो कि प्रमुख रेल हब है और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ और अमृतसर जैसे शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना सकते हैं और पटना में कई प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं जिनमें पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और दानापुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। सड़क मार्ग से अगर आप यहां जाना चाहें तो पटना जिला सड़कों के एक नेटवर्क से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 दानापुर और पटना सिटी से होकर गुजरती है। आप कार, बस या अन्य सड़क परिवहन से यहां पहुंचने के लिए यात्रा कर सकते हैं। तो भाई बहुत से तरीके हैं जो आपको यहां पर पहुंचाते हैं। वेल, और भी बहुत सारी चीजें हैं इस जगह के बारे में जानने के लिए। आपको मैं ये बताऊंगी कि यहां पर घूमने के लिए क्या क्या है। तो भाई भारत के समृद्ध इतिहास को समेटे हुए पटना की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी और तब इसका नाम पाटलिपुत्र था। अद्भुत खंडहरों से सजा ये आधुनिक शहर सिर्फ एक शहर से कहीं बढ़कर है। मठों, मंदिरों और संग्रहालयों के साथ ये शहर हर कोने को देखने और तलाशने के लिए हजारों कारण देता है। ये शहर आधुनिक और अतीत के गौरव का एक सुंदर समामेलन दर्शाता है। इस अद्भुत मिश्रण को देखने के लिए यहाँ पटना में बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर आपको जरूर जाना चाहिए। हालांकि पटना की पैदल यात्रा इस शहर के सभी आकर्षणों को देखने के लिए एक आकर्षक विकल्प है, लेकिन ऐतिहासिक स्थलों और संग्रहालयों से परे भी बहुत कुछ है जिसे देखा जा सकता है। यहाँ पटना में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों की अगर मैं बात करूं तो उनमें से एक है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र। पटना में घूमने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में से एक माना जाने वाला ये शानदार और अच्छी तरह से सुसज्जित विज्ञान केंद्र 1978 में बनाया गया था और ये स्थान विज्ञान के सिद्धांतों के अद्भुत प्रदर्शनों के विशाल संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए जाना जाता है। चाहे आप बच्चे हों या वयस्क, इस जगह पर अनुभव करने और एक अभिनव शैक्षिक भ्रमण करने के लिए बहुत सी चीजें हैं और ये पटना में प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। और सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे तक खुला रहता है, तो 2-3 घंटे का अगर आपके पास समय है तो आप इस जगह को आसानी से देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, जरूर बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

और आप ही आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस के साथ। तो भाई बता दूं आपको कि बिहार में यानी पटना में एक बिहार संग्रहालय भी है। इतिहास के शौकीनों के लिए बिहार संग्रहालय पटना में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है और ये जगह राज्य के इतिहास और प्राचीन संस्कृति के बारे में जानकारी देती है। संग्रहालय के अंदर ऐसी कलाकृतियां हैं जो सदियों पुराने पटना संग्रहालय से जुड़ी हैं। इसके साथ ही मानव इतिहास के बारे में जानकारी और कलाकृतियां भी स्थापित हैं। करीब 5.5 हेक्टेयर भूमि में फैले संग्रहालय में इमारतों की एक बिखरी हुई योजना है जिसमें गैलरी, शैक्षिक और प्रशासनिक क्षेत्र शामिल हैं। सुबह 10:30 बजे से 5:00 बजे तक ये खुला रहता है और छोटा सा शुल्क है जो आपको यहां जाने के लिए देना होता है, करीब 50 या 100 रुपए के आसपास। तो आपको इस जगह को जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा पटना तारामंडल आप देख सकते हैं। पटना शहर में स्थित पटना प्लेनेटेरियम को एशिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े प्लेनेटेरियम्स में से एक माना जाता है। ये आधुनिक प्रक्षेपण प्रणाली को दर्शाता है और एक आकर्षक सभागार के साथ एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया परिसर भी है। यहां पर अंदर खगोल विज्ञान से संबंधित कई फिल्म शो प्रदर्शित किए जाते हैं। ये पटना के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। सुबह 11 से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है और यहां पे भी आपको प्रवेश शुल्क देना होगा। 3 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे अगर हैं तो उनके लिए भी, और अगर उससे छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आपको शुल्क नहीं देना है। पटना संग्रहालय स्थानीय रूप से जादू घर के नाम से मशहूर पटना संग्रहालय भी एक यहां पर जगह है जो आप देख सकते हैं। बिहार में घूमने के लिए सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है ये, और ये जगह करीब 50,000 दुर्लभ कलाकृतियों के लिए जानी जाती है जो देखने लायक हैं। इसके अलावा यहां मध्ययुग, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल और प्राचीन काल की भारतीय कलाकृतियां भी हैं जो आप देख सकते हैं। 1917 में निर्मित इस जगह में एक समृद्ध संग्रह है जो भारतीय इतिहास और राज्य के गौरव को दर्शाता है। इमारत में मुगल और राजपूत वास्तुकला का प्रदर्शन भी किया गया है और इसके परिसर में कई गैलरीज हैं। ये पटना की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। सुबह 10:30 बजे खुल जाता है, शाम 4:30 बजे बंद हो जाता है और सोमवार का दिन यहां पर अवकाश रहता है। अगर आप यहां घूमने के लिए जाते हैं तो यहां भी आपको प्रवेश शुल्क के तौर पर करीब 15-20 रुपए आपको देना पड़ सकता है। तो अगर आप यहां भी जाने का प्लान करें तो ये भी एक आपके लिए यादगार अनुभव होगा। इसके अलावा जापानी शांति पैगोडा है जो कि 1969 में खुदाई में प्राप्त जापानी शांति पैगोडा 125 फीट ऊंची प्रतिमा है जिसे बुद्ध विहार सोसाइटी ने बनाया था। ये सफेद सुंदर स्तूप हरियाली से घिरा हुआ है और एक तालाब से सजा है। साथ ही यहां बोटिंग का आनंद भी आप ले सकते हैं। स्तूप के आसपास उत्तरी तट पर एक संग्रहालय है जिसमें खुदाई के दौरान मिली कलाकृतियां शामिल हैं और ये पटना के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके अलावा आप चाहें तो छोटी दरगाह देखने के लिए भी जा सकते हैं। बताऊंगी जरूर इस जगह के बारे में भी, लेकिन इस गीत के बाद।

तो दोस्तों आज हम निकले हैं बिहार के पटना की सैर पर और मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर घूमने के लिए और कौन कौन सी प्लेसेस हैं तो जरूर बताऊंगी। 11:28 39 सेकंड्स हो चुके हैं।

0: श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी एक और जगह जिसे छोटी दरगाह कहते हैं। यहाँ पर क्या है घूमने के लिए, अपने इतिहास को बरकरार रखते हुए छोटी दरगाह एक 3 मंजिला मकबरा है जो मनेर में स्थित है। पटना से 30 किलोमीटर की दूरी पर NH 30 पर स्थित है ये, और इसे वास्तुकला का चमत्कार माना जाता है। ये वो जगह है जहां 1616 में मखदूम शाह को दफनाया गया था और वर्तमान समय में ये मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के लिए लोकप्रिय दरगाह है। इसके साथ ही एक बड़ा तालाब भी है जो मकबरे के ठीक सामने स्थित है। आप इस स्थान को पटना में दोस्तों के साथ एक दिन घूमने की जगहों की सूची में शामिल कर सकते हैं। यहां जाने के लिए आपको कोई प्रवेश शुल्क नहीं देना है। और इसके अलावा आप चाहें तो संजय गांधी वनस्पति उद्यान है, स्थानीय रूप से जैविक उद्यान के नाम से ये मशहूर है, संजय गांधी जैविक उद्यान के नाम से। और इस वनस्पति उद्यान की स्थापना 1969 में हुई थी। ये पटना में कपल्स के लिए घूमने के लिए बहुत ही शांत प्लेस है जहां पर आप जा सकते हैं। वनस्पतियों और जीवों की एक विशाल विविधता का घर है ये वनस्पति उद्यान को। पटना चिड़ियाघर भी कहा जाता है। जो लोग हाथी की सवारी और टॉय ट्रेन का मजा लेना चाहते हैं वो यहां पर बच्चों के साथ जरूर जा सकते हैं। और ये सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। और इसके अलावा लौरिया नंदनगढ़ एक खूबसूरत जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। खूबसूरत वास्तु कला वाले अशोक स्तंभ के लिए खास तौर से प्रसिद्ध है ये, और ये असली शहर बेतिया से 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। लौरिया नाम मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ यानी लौर से लिया गया था। इस स्थल पर लगभग 20 पुरातात्विक तट भी हैं जो 3 पंक्तियों में पंक्तिबद्ध हैं, और इस जगह पर मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा लगभग 40 स्तंभ बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान समय में सिर्फ एक स्तंभ मौजूद है जो देखने के लिए यहां पर लोग पहुंचते हैं। और ये पटना के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। प्रवेश शुल्क नहीं है, यहां भी आप आसानी से यहां भी जा सकते हैं। गांधी घाट की बात करूं तो गंगा नदी के तट पर स्थित एक लोकप्रिय धार्मिक स्थल है ये जो पटना के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, क्योंकि महात्मा गांधी की अस्थियां इस स्थान पर विसर्जित की गई थी। और इस खूबसूरत स्थल का मुख्य आकर्षण गंगा आरती है जिसमें भगवा वस्त्र पहने पुजारियों का एक समूह 51 द्वीपों से प्रार्थना करता है। और इस जगह की सैर पटना में करने के लिए सबसे अच्छी चीजों में से एक है ये। अगर मैं कहूं तो पूरा दिन आप यहां पर जा सकते हैं। प्रवेश शुल्क तो यहां नहीं है, लेकिन आप यहां गंगा घाट का आनंद जरूर ले सकते हैं, यहां की आरती का आनंद जरूर ले सकते हैं। इसके अलावा गोलघर एक जगह है। पटना शहर के बीचों बीच स्थित गोलघर का निर्माण कैप्टन जॉन गास्टन ने साल 1786 में गोदाम के रूप में करवाया था। और पटना की प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित यह विशाल संरचना अन्न भंडार के शीर्ष से पूरे शहर का शानदार नजारा पेश करती है। शांति चाहने वालों के लिए ये यकीनन पटना में घूमने की सबसे अच्छी जगह है। और सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ये भी खुला रहता है। पाटन देवी मंदिर है एक पटना में। पाटन देवी मंदिर एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और इसे स्थानीय रूप से मां पटनेश्वरी के नाम से जाना जाता है। पटना का सबसे पुराना मंदिर होने की वजह से ये अपने खास अनुभवों के लिए भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। और ये मंदिर शक्ति पीठों में से एक है और पूरे साल तीर्थयात्रियों का स्वागत करता है। ये पटना के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है और यहां भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। कुम्हरार एक जगह है। पाटलिपुत्र के प्राचीन शहर के अवशेषों का अन्वेषण आप यहां पर कर सकते हैं जिस पर कई उत्खनन कार्य हुए हैं। और इस प्राचीन शहर के मुख्य आकर्षण आरोग्य विहार, असेंबली हॉल, दुराखी देवी मंदिर और आनंद विहार है। यहां पर आप जा सकते हैं। इतिहास प्रेमियों और उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो पिछले युग के तथ्यों को उजागर करना पसंद करते हैं। और इसके अलावा क्या है यहां देखने को जरूर बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: पटना की सैर कर रहे हैं आप और हम। बिहार की खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग का घर राजधानी होने के नाते पटना में कई प्रमुख केंद्र हैं जो इस कला की बेहतरीन संग्रह प्रदर्शित करते हैं। इसलिए अगर आपको मधुबनी पेंटिंग से भी प्यार है, लगाव है, तो आप कुछ असली मास्टरपीस खरीदने के लिए जा सकते हैं फ्रेजर रोड।

पर स्थित अजंता में। यहां पर रविवार को छुट्टी रहती है लेकिन बाकी दिन आपको यहां का संग्रह देखने का मौका मिल सकता है और आप यहां से कुछ खरीदना चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। गांधी संग्रहालय है, गांधी संग्रहालय जो कि दिलचस्प संग्रहालय पटना में उन जगहों में से एक है जहां आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं, जैसे इतिहास के शौकीन दोस्त अगर आपके साथ हैं तो आप उन्हें यहां लेकर जा सकते हैं। काफी लोकप्रिय है ये जगह। महात्मा गांधी के जीवन की दृश्य जीवनी को चित्रों के साथ यहां पर दिखाया गया है और यहां कई किताबें और ऑडियो लाइब्रेरी भी है जो उस युग की खास जानकारी देती है, तो आप यहां भी जा सकते हैं। महावीर मंदिर है कि यहां पर, इसके अलावा सीतामढ़ी है जो सीतामढ़ी एक शांत शहर है, हिंदुओं के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल है, यहां भी आप जा सकते हैं। और महावीर मंदिर, जैसा कि मैंने कहा कि ये भी यहां का, अगर मैं कहूं महावीर मंदिर उत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल माना जाता है यहां, और ये मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। यहां पर भी साल भर हजारों तीर्थयात्री पहुंचते हैं, यहां आप जा सकते हैं। इसके अलावा जालान संग्रहालय है, गांधी मैदान है, इको पार्क है, इस्कॉन मंदिर है, कोलुआ कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पटना में आपको हर यात्रा को, मैं कहूं कि अगर हर बार आप यहां पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ देखने के लिए आपको जरूर मिलेगा अगर आप एक यात्रा में इसे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो भी। और अगर मैं बात करूं यहां आपको खरीदना क्या चाहिए, तो भाई आपको बता दूं कि हाथ से बनी वस्तुएं, दीवार पर लटकने वाली वस्तुएं जैसे कि वॉल हैंगिंग्स, मधुबनी पेंटिंग, चमड़े की वस्तुएं, मोतियों से बने आभूषण और कई स्थानीय रूप से निर्मित चीजें आप यहां से खरीद सकते हैं। उपहार और स्मृति चिन्ह के रूप में आप अपने दोस्तों के लिए, परिवार के लिए ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर भाषा की, तो भाई बिहार में हिंदी व्यापक रूप से बोली जाती है, हालांकि राज्य में 5 बोलियां इस्तेमाल की जाती हैं और ये हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही, वर्जिका और अंगिका। लेकिन अगर आप हिंदी जानते हैं तो आप यहां आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। पटना में खाने की बात करूं, क्योंकि घूमते घूमते भूख लगना तो लाजमी है, और जब आपको भूख लगे तो यहां आप क्या चख सकते हैं, स्ट्रीट फूड के तौर पर आपको आसानी से मिल जाएगा लिट्टी चोखा। पटना का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है सत्तू से भरे गेहूं के गोले को आग पर भूनकर, और चोखी जो कि भुनी हुई बैंगन और आलू की, टमाटर की सब्जी होती है, इसके साथ परोसा जाता है, तो ये आप यहां पर चख सकते हैं। कचौरी और चने की घुगनी भी आप यहां टेस्ट कर सकते हैं, ये भी एक स्ट्रीट फूड है यहां पर, और कचौरी के साथ चने की घुगनी एक लोकप्रिय पेट भरने वाला स्ट्रीट फूड है, तो ये भी आप चख सकते हैं। मालपुआ टेस्ट कर सकते हैं, मैदा, दूध और नारियल से ये बनता है, एक तरह का पैनकेक है। बटाटा पूरी जो कुरकुरी सूजी से बनाई जाती है, मसालेदार आलू और दही भरकर ऊपर से चटनी के साथ अनार और सेब डालकर परोसा जाता है इसे। और मोमोज तो आपको हर जगह मिल ही जाते हैं, अगर आप इन्हें खाना पसंद करते हैं तो ये भी आपको यहां मिल जाएंगे। टमाटर चाट आप चख सकते हैं, चंपारण मटर, मटन और बिहारी कबाब, कटहल की सब्जी, कड़ी बड़ी, ये बहुत सारी चीजें हैं जो यहां पर आपको आपके जायके को बढ़ाने के लिए मिल जाएंगी। और अगर मैं बात करूं तो पटना बहुव्यंजन परोसने के लिए जाना जाता है, जिसमें मुगलई भोजन, थाई और चीनी भोजन और मुर्ग मलाई और ग्रिल्ड मछली भी शामिल है। पटना एक ऐसा शहर है जो सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक आकर्षणों से भरपूर है, और पटना में कई छिपी हुई जगहें हैं जो इस जगह की विरासत को दर्शाती हैं। बिहार की राजधानी पटना में छठ पूजा, दीपावली और प्रकाश पर्व जैसे त्योहार भी भव्य तौर पर मनाए जाते हैं, और यहां गांधी मैदान और बाकी स्थानों पर प्रसिद्ध बिहार सरस मेला, पुस्तक मेला और दुर्गा पूजा के बड़े आयोजन होते हैं। पास ही एशिया का प्रसिद्ध सोनपुर मेला भी लगता है। प्रमुख त्योहार छठ पूजा है और ये बिहार का सबसे बड़ा और मुख्य लोक पर्व है, जहां आप अगर इस मौके पर यहां पहुंचे तो इसका हिस्सा भी आप बन सकते हैं। पटना में गंगा घाटों पर लाखों लोग सूर्य देव की पूजा करते हुए आपको इस मौके पर मिल जाएंगे। प्रकाश पर्व की बात करूं तो 10वें सिख गुरु, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थान होने की वजह से पटना साहिब भी उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाता है। और दुर्गा पूजा की बात करें तो शारदीय नवरात्र के दौरान पटना में शानदार पंडाल बनते हैं और शहर में भारी भीड़ होती है। मकर संक्रांति, दावते चूड़ा दही, यहां एक त्योहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जाता है ये। और प्रसिद्ध मेले, बिहार सरस मेले की बात करूं तो गांधी मैदान में, जैसा कि मैंने कहा, यह लगता है ग्रामीण हस्तशिल्प और कला का प्रदर्शन यहां होता है। पटना पुस्तक मेला पुस्तक प्रेमियों के लिए गांधी मैदान और बाकी सांस्कृतिक केंद्रों पर आयोजित होने वाला बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है ये। सोनपुर मेला, जो कि पटना के पास सोनपुर में एशिया के सबसे बड़ा पशु मेला के तौर पर जाना जाता है और परंपरा व्यापार का अनूठा केंद्र भी है, तो आपको इन सब का हिस्सा भी जरूर बनना चाहिए। तो भाई पटना एक ऐसी जगह है जहां पर आप जाएंगे तो आपकी यादों में बहुत कुछ समेट कर लाएंगे, और बहुत कुछ ऐसा है जो फिर भी छूट जाएगा क्योंकि आपको पटना दोबारा

जाने का मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि पटना की यात्रा में जितना भी देखें कम है। बहुत खूबसूरत जगह है, जब भी मौका मिले जरूर जाइएगा यहाँ पर। फिलहाल एक और गीत आप तक पहुंचाती हूँ और उसके बाद बताऊंगी आगे क्या है सफर में।

অমিতা ধ্রুবদল শোভিনী সুহাসিনী সুমধুর ভাষিণী।

मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलो हर्ज और 104 FM मेगाहर्ज पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 25 तारीख व दिन है मंगलवार। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण। अब से लेकर रात्रि 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले तमाम कार्यक्रमों को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए ड्यूटी पे उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायिका श्रीमती संगीत सोमो, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कामयांग फो और श्री तानिंग ताको, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमल कुमार दास, मोमपा में उद्घोषक श्री धुतन रशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उद्घोषिका येशी पेमा। हम सभी आकाशवाणी सुन रहे आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं।

ये आकाशवाणी का तरंग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बजने वाले हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम के आरंभ में पहले आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड न्यूज दोपहर 2 बजे तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: आज सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की।

0: पेइचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
2: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
3: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
4: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
5: मैं FedEx और दिल्ली GMR Airport को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
4: We want to create global स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
0: एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री

0: कंपनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
1: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के आसपास निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से झारखंड में मध्यम से भारी बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी करते हुए रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, लातेहार, चतरा और गिरिडीह समेत 10 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। इन जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों को मौसम की स्थिति को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्सों में बारिश हुई, जबकि पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में सबसे अधिक 97 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी, जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ UPI को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोता भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित दोपहर समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनिए गेलोंग गांवश के और साथियों द्वारा चंद बोध भक्ति गीत।
3: Was सुमे दो जम बजे देंगे गान दम जे दगे।

श्रोता भी आप सुन रहे थे भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत गेलोंग गाओंग शक्य और साथियों द्वारा चंद बोध भक्ति गीत। अब यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3 बज गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम

0: कंप्यूटर के सामने बीतता है, ऐसे में खेलों का महत्व और भी बढ़ जाता है। सबसे पहले खेल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। नियमित रूप से खेल खेलने से शरीर स्वस्थ, मजबूत और सक्रिय रहता है। इससे हमारी सहन शक्ति, ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा हम कई बीमारियों से दूर रहते हैं। दूसरे खेल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं। खेल खेलने से तनाव, चिंता और थकान कम होती है। इससे हमारा मन प्रसन्न रहता है और संघर्ष शक्ति तथा निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे कि कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। खेल अनुशासन और चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल हमें नियमों का पालन करना, समय का महत्व समझाना और ईमानदारी से प्रयास करना सिखाते हैं। जीत हमें आत्मविश्वास देती है और हार हमें धैर्य तथा संघर्ष करना सिखाते हैं। टीम खेलों के माध्यम से हम सहयोग, एकता और नेतृत्व के गुण सीखते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेल हमें टीम भावना सिखाते हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में उपयोग होते हैं। खेल सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेल मैदान में पसीना बहाकर तो देखो, मुश्किल में जीत का होकर हुनर पाकर तो देखो। खेल मैदान में पसीना बहाकर तो देखो, मुश्किल में जीत का हुनर पाकर तो देखो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने विचारों को पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद
1: श्रोता। अभी आपने दैनिक कार्यक्रम मेरी बात के अंतर्गत पीएम श्री जैनविताओं के विज्ञान की छात्र सुश्री पेमा छुकी से एक वार्ता सुना। वार्ता का विषय था खेल और क्रीड़ा का महत्व।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:33 हो गए हैं। निजी श्रोता प्रस्तुत है महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। कार्यक्रम नारी संगीत का पहला गीत आइए सुनते हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर फिल्म से श्रेया घोषाल, उदित नारायण और विशाल शेखर की आवाजों में इस गीत को बोल दिए हैं अन्विता दत्त ने तथा संगीत से संवारा है विशाल शेखर ने।

0: श्रोताओं, इस सात समय फिल्मी गीत के साथ ही विभिन्न प्रंत का कार्यक्रम प्रदेशी संगीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, पेश है दैनिक कार्यक्रम मेरी बात। आज इस कार्यक्रम में आप सुनिए पीएम श्री जैनवीर तवांग के विज्ञान की छात्रा सुश्री पेमा छकी से एक वार्ता। वार्ता का विषय है खेल और क्रीड़ा का महत्व।
1: आकाशवाणी तवंग से प्रसारित दैनिक कार्यक्रम मेरी बात में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूं कुमारी पेमा छिकी, पीएम श्री जैनवीर तवंग में 11वीं विज्ञान की छात्रा हूं। आज का कार्यक्रम में मेरी वार्ता का विषय है खेल और क्रीड़ा के महत्व। आज के समय में जब हमारा अधिकतर समय पढ़ाई, मोबाइल और

शंकर एहसान लोय के संगीत पर श्रोताए सुनते कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म वेकअप सीट से कविता सेठ की आवाज में।

अरुणाचल प्रदेश के क्रिएटर्स सुनो, आपके होम टाउन की वाइब एकदम नेक्स्ट लेवल है। पहाड़, कल्चर, खाना, ट्रेडिशंस और ढेर सारी स्टोरीज। अब टाइम है अपनी स्टोरी को इंडिया के स्टेज तक ले जाने का। जुड़िए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज से और बनाइए 1 से 3 मिनट की वीडियो जो बताए कि आपका जिला कितना यूनिक है। और हाँ, प्राइज भी जबरदस्त है। डिस्ट्रिक्ट विनर्स 50,000, स्टेट विनर्स 2 लाख रुपए और नेशनल विनर्स 5 लाख रुपए। बस वेव्स OTT पे रजिस्टर करें, माई वेव्स पर जाकर क्रिएटर प्रोफाइल बनाएं और अपनी वीडियो सबमिट करें। अरुणाचल के क्रिएटर्स, कैमरा उठाओ और अपनी स्टोरी दिखाओ।

श्रोता, अभी आपने फिल्म ऊंचाई से अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में एक गीत सुना। इस गीत के गायक थे, रचयिता थे इरशाद कामिल तथा संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने। इस गीत के साथ ही महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत अभी यहीं पर समाप्त हुआ।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हो गए हैं। लीजिए श्रोता, पेश है आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। कार्यक्रम गीत मंजरी का पहला गीत आइए सुनते हैं। अनु मलिक के संगीत पर फिल्म दम लगा के हैशा से पापोन की आवाज में।

सुनते हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। इस गीत को बोल दिया है अमिताभ भट्टाचार्य ने तथा संगीत दिया है प्रीतम ने।

अपनी कहानी हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच देती है। शुरुआत 2 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स ओटीटी इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स ओटीटी और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2 लाख रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5 लाख रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।

श्रोताओं, अभी आपने फिल्म सत्यप्रेम की कथा से अजीत सिंह और तुलसी कुमार की आवाज में एक गीत सुना। इस गीत के रचयिता गुरप्रीत सैनी और अली सैद तथा संगीत दिया था रोचक कोहली ने। आइए कार्यक्रम को यूं जारी रखते हुए सुनते हैं साहित कदरी के गीत पर फिल्म गदर 2 से अजीत सिंह और मिथुन की आवाज में कार्यक्रम का अगला गीत।

मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से वेव्स ओटीटी ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माई वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें। अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें। एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।

श्रोता, अभी आपने कुमार के गीत पर फिल्म जवान से अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में एक गीत का आनंद लिया। आइए कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए सुनते हैं।

श्याम बहादुर फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत श्रेया घोषाल और सोनू निगम की आवाजों में। इस गीत के रचयिता गुलजार तथा संगीत दिया है शंकर एहसान लोई ने।

0: एक सवाल पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे?
1: सोचिए, मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी लिए खास है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट, या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या भुजबल वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते हैं।

0: बस यही तो आपकी कहानी है और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया।
1: अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जेम छुपा है।
2: तो इंतजार किस बात का? जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई वेब पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानी।

श्रोता, अभी आपने फिल्म एनिमल से राजशेखर के गीत पर विशाल मिश्रा के आवाज में एक गीत का आनंद लिया। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत फिल्म डंकी से।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आधुनिक हिंदी फिल्म गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तारांक केंद्र है। समय शाम के 4:30 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। कार्यक्रम राग रंग में आज आप सुनिए अली अकबर खान से सरोद वादन, राग है मधुमन सरंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग के अंतर्गत अली अकबर खान से सरोद वादन, राग था मधुबंत सरंग। ये आकाशवाणी का तांग केंद्र है। समय शाम के 4:45 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार 4:45 पर तथा अंग्रेजी में समाचार 4:55 पर। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

ये आकाशवाणी है, अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे जिले के लिए एसआईआर 2026 के इलेक्ट्रल रोल ऑब्जर्वर विवेक एचपी ने यूपीआई में आयोजित एक बैठक के दौरान जिले में चल रहे निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 की समीक्षा की। अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग पंचायत राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल पर एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित। दिबांग वैली उपायुक्त यशवंत मीणा ने डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। अमेरिका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 262 रन बनाए हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान की है। यूनिफाइड पेमेंट्स

0: एक्सप्रेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेनदेन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार,
0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त होंगे। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया है कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
2: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार,
0: अरुणाचल प्रदेश की पापुमपारे जिला SIR 2026 के इलेक्ट्रल रोल ऑब्जर्वर ERO विवेक HP ने यूपीआई में आयोजित एक बैठक के दौरान जिले में चल रहे निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 की समीक्षा की। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जनता के विश्वास के महत्व पर जोर देते हुए ERO ने कहा है कि निर्वाचक नामावली की तैयारी से लेकर मतदान कराने तक चुनावों की विश्वसनीयता के लिए जनता का विश्वास बुनियादी आधार है। उन्होंने कहा है कि SIR नियमित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण से अलग है। इससे बूथ लेवल अधिकारियों और बूथ लेवल एजेंट्स द्वारा व्यापक घर घर सत्यापन किया जाता है, ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूटा न रह जाए और निर्वाचक नामावली सटीकता तथा विश्वसनीयता में बनी रहे। उन्होंने कहा है कि इस गहन अभियान का उद्देश्य निर्वाचन कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुरूप अपात्र प्रविष्टियों की पहचान कर उन्हें हटाना भी है। बूथ लेवल अधिकारियों के सराहनीय प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने सभी BLOs एवं BLAs के दावे और आपत्तियों की सुनवाई प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया, ताकि किसी भी परेशानी का समय पर निवारण हो सके और बाद के चरणों में किसी तरह की जटिलता से बचा जा सके। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग DC कॉन्फ्रेंस हॉल में पंचायत राज संस्थाओं यानी PRI सदस्यों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल पर एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में जमीन स्तर पर भागीदारी को मजबूत करना था। कार्यक्रम में PRI सदस्यों और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल पर और इसमें PRI सदस्यों की भूमिका, लैंगिक समानता और PLO में महत्व, बाल विवाह और रोकथाम, बाल संरक्षण तथा बालिकाओं की शिक्षा और स्कूल छोड़ चुकी छात्राओं के दोबारा नामांकन को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। दिबांग वैली उपायुक्त यशवंत मीणा ने DC कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था को और मजबूत करने में प्रमुख विभागों के

0: प्रतिनिधियों और संबंधित हितधारकों ने भाग लिया। बैठक में घर घर से कचरा संग्रहण, गीले कचरे से कंपोस्ट तैयार करने, कचरे की परिवहन और वैज्ञानिक तकनीक से निस्तारण सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें विशेष रूप से टाउनशिप बाजारों, होटल्स, रिसोर्ट्स, होमस्टे और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उपायुक्त ने कहा है कि स्वच्छ दिवांग वैली के लिए सामूहिक जिम्मेदारी और समन्वित कार्रवाई आवश्यक होगी। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सीडॉट के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में सीडॉट की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
1: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
2: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही सी डॉट प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
0: अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदकों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इनमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल है। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा के निर्धारण सीमा के तहत आने वाले अनुमितात 50,000 आवेदकों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8 अरब 80 करोड़ अमेरिकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। क्रिकेट में कोलंबो ने भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपने पहली पारी में 8 विकेट के नुकसान पर 263 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। नागरिक विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है। एयर इंडिया की फुकेट दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पिंकी मिची। Prime Minister Narendra Modi hailed the decade-long success of service of Unified Payment Interface. In a social media post, Mr. Modi marked UPI as a major turning point in India's digital payments journey. Calling the countrymen to share the UPI experience, he stated that the sheer scale and reach of UPI is something every Indian must be proud of. The Unified Payment Interface, which was launched on this day in 2016, has completed 10 years of transforming digital payments in India. The unprecedented scale and reliability achieved by UPI have earned global recognition, with a system now operational across 11 countries. The UPI has surged almost 13,000-fold in transaction volume. Finance Ministry said that the annual transaction volume expanded from just 1.78 crore transactions in 2016-17 to over 24,162 crore transactions in 2025-26. The transaction value also rose sharply from 7,000 crore to nearly 314 lakh crore during the same period. The central government has empowered the West Bengal government to conduct hearings under the Citizenship Amendment Act or CAA and issued citizenship certificates to eligible applicants, showing a gadget notification issued by the Union Home Ministry. Chief Minister Subhendu Adhikari told reporters at state headquarters yesterday that 23,000 people have so far been recognized as eligible and issued citizenship certificates out of around 2,30,000 applicants. He said that the remaining applications would be processed quickly and the certificates would be handed over to respective district magistrates. The Chief Minister urged people who had fled from Bangladesh due to religious persecution to apply for citizenship under the CAA. Defence Minister Rajnath Singh has approved the transfer of DRDO-developed technologies of all conventional missile systems to the Indian defence industry for production within the country. Our correspondent reports that the initiative aims to enhance operational capability.

0: the hello.
1: Oh,

0: 젖은 허둥.
1: 어, 그래.
0: 젖은 젖은 젖은 허둥.
1: 어, 그래.
0: 다동원 아니, 다지 해쇼. 달지 해쇼 말이에 셰보 다강흥생

行きましょう。皆が経験ましへんな。みがらギャザーゲポハザー。

들게 해준 시쇼 만메타 부몰렌도도 만메타 부몰렌교해중 어삼바루베 대시쇼

的师兄，那你把你妈儿都是着

기비 샵든 라모체바 닌 오멀음 두누 센메토임보 투제니스체 나 힌디가 세규니 슈제 인지가 세규 룽팅캉 델리각슈 센메토임보 데이트노 투제니스는 칼메치제 먼줄 위디에 니게덴 각 롭투바 디왕 고게시 녕악 스제규로 센메토임보 투제니스는 칼메치데제 에키 필름세 देशनोप चुजने सुनिन कर्म खले लेंगे जे अपने दर्दी अपने लोग लंगेना देशनोप चुजने सुनिन कर्म खेने लेंगे जे लुंटिंग कंग इडाना शुसो ना हिंदी का सेग्युने निश्चित जे इंजी का सेग्युर सेमी तो एम्बो चुजने सुनिन कर्म खेने चिलें जे कोमी ऐतरानी देशनोप चुजे गे जे लंगे इडां बासी व्हाट्सएप शेबर गुया Suze Gedudin Karmakalichije, Cemetrindruk, Sengurnin, Samajar Sandia, Suze Gedudin Karmakanilange, Deshnop Suze Duguje, New Sednan, Suze Dudin Karmichilange, None of the Lirima, Kirjenok, Hindiga Jusemetember, Langena Deshnop Suze Dudin Karmichigroje, Deshnop to Lunting, Tawang, Lirimbana, Chazan Dumber, Langena Stada, Lirim Sedaka, Na Deshnop the Lirim, Tetin, Chuzekora Jusen number.

0: आपके सिटी या डिस्ट्रिक्ट में भी कोई ऐसी स्टोरी है जो इंटरनेट को पता होनी चाहिए, तो कैमरा उठाओ बिकॉज दिस इज योर मोमेंट। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज शुरू हो रहा है 2 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज में। बस 1-3 मिनट का वीडियो बनाओ और शोकेस करो अपने डिस्ट्रिक्ट की कल्चर, हेरिटेज, टूरिज्म, ट्रेडिशंस, लोकल स्टोरीज या यूनिक आइडेंटिटी। पार्टिसिपेट करना है? वीव्स ओटीटी ऐप पर रजिस्टर करो, जो अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर। माई वीव्स पर क्लिक करो, प्रोग्राम सेक्शन में जाओ और अपना वीडियो सबमिट करो। और हाँ, प्राइज मनी भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 50,000 रुपीज, स्टेट लेवल पर 2 लाख रुपीज और नेशनल लेवल पर 5 लाख रुपीज। सबमिशंस ओपन है 1 अगस्त से 31st August 2026 तक, तो अपनी स्टोरी और क्रिएशन को दो स्पॉटलाइट।
1: मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज और साथ ही 104 FM MHz पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 6:11 हो गए हैं। लीजिए श्रोताओ, प्रस्तुत है कार्यक्रम जरुखा। कार्यक्रम जरुखा में आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रम, वह कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। तो आइए श्रोताओ, पहले आपको आज के शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर मनपा कार्यक्रम शेरनेर में सुनिए तपोवन कॉलोनी के अमाल हमडेमा और साथियों द्वारा शेदुन, गुंचक सुम्पा, गंदन लहिमा, ग्यावे शप्तन, लामा छेपा और गोबा मल्लम। आज शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर। आज शाम 7:10 पर कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता। आज इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे मोनिल विद्या निकेतन तवांग के छात्र देवंग गोगाई से हिंदी में एक कविता। शाम 7:11 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज आप सुन पाएंगे आशिकी 2 फिल्म से पलक मुच्छल, अरिजीत सिंह, अंकित तिवारी और तुलसी कुमार के आवाजों में चंद नगमे। आज शाम 7

बजकर 25 मिनट पर साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज, शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमी तराने। इसमें आज आप सुन पाएंगे फिल्म केसरी से बी परख की आवाज में एक देशभक्ति गीत। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों का आनंद ले पाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्किन रात्रि 8:30 पर तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8:09। तो श्रोता, ये थे हमारे केंद्र से आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारियां। आइए अब आपको कल यानी 26 अगस्त 2026 को प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। रोजाना की तरह हमारा सभा आरंभ होगा कल दोपहर 2 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित मिट्टी न्यूज के साथ तथा 2:15 पर दोपहर समाचार। कल दोपहर 2:30 पर भक्ति गीत का कार्यक्रम वंदना, दोपहर 3 बजे विभिन्न प्रांत का कार्यक्रम प्रदेश संगीत। इस कार्यक्रम में कल आप सुन पाएंगे भूपेन हजरिका द्वारा चनासमीय फिल्मी गीत। कल दोपहर 3:30 पर दैनिक कार्यक्रम मेरी बात, इस कार्यक्रम में कल आप सुन पाएंगे पीएम श्री जैन बीतांग के विज्ञान के छात्र कर्मा छोटन से एक वार्ता। कल दोपहर 3:33 पर महिलाओं पर केंद्रित फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत, इस कार्यक्रम में कल आप आनंद ले पाएंगे फिल्म अहर लव स्टोरी से श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म से अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल, चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म से सुनिधि चौहान, अरिजीत सिंह और नीति मोहन, और फिल्म ओम शांति ओम से केके की आवाजों में चंद फिल्मी नगमे। कल दोपहर 3:50 पर आधुनिक हिंदी फिल्मी गीत का कार्यक्रम गीत मंजरी में आनंद लीजिएगा। नोटबुक फिल्म से कमल खान, सत्यमेव जयते फिल्म से अतीफ असलम और तुलसी कुमार, मुन्ना माइकल फिल्म से विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान, मित्रों फिल्म से जुबेन नोटियाल, बैंग बैंग फिल्म से हर्षदीप कौर और बेनी दयाल, भूल भुलैया 2 फिल्म से अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार, टू स्टेट्स फिल्म से अरिजीत सिंह और चिन्मय शुभदा, ये जवानी है दीवानी फिल्म से बेनी दयाल और शिपाली अल्वरेस, और फिल्म केदारनाथ से अरिजीत सिंह, देव नेगी और निकिता गांधी की आवाजों में चंद फिल्मी नगमे। कल शाम 4:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग, शाम 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, शाम 5 बजे कार्यक्रम नमतन लेनिम, 5:30 पर दैनिक मुख्य सूचना मनपा में। कल शाम 5:35 पर कार्यक्रम नंगछोई कलम, शाम 6 बजे कार्यक्रम लेरिम सेढ़ा, 6:10 पर कार्यक्रम जरुखा। कल शाम 6:20 पर मोनपा कार्यक्रम शेदन लेरिम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत कला आप सुन पाएंगे तावांग मठ के पूर्व लोपन लामा नावांग नोरबू द्वारा 11वें शब्दन का शेष भाग तथा अनिजिक्मी संगमो और साथियों द्वारा शेदन ड्रेमा तोयपा। कल शाम 7 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार।

तथा अंग्रेजी में समाचार 7:05 पर, शाम 7:10 पर साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, कल शाम 7:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार तथा 7:50 पर रीजनल न्यूज, शाम 7:55 पर देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमी तराने, रात्रि 8 आप आनंद ले पाएंगे आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों का कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत में। कल रात्रि 8:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्किन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8 रात्रि 2:00। तो श्रोताओ, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारियां। इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम जरूर अब यहीं पर समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है, समय संध्या के 6:20 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे मनपा में, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: Hanging us that Lunting Tawang Namingodun Chindun Lirima Topo One Colony Yena Tagok Amalham Demasi Christono Kinchak Sumba Givi Chapden Lamacheba Ningomanam Dunasa Number Hanging out the Balunting Tawang Dishnup Dugman Baglerim Bana Chazan Duder Hanget someone up to the Nisonder Hanging out of Huji Na Hindiga Sigun Huji Injiga Sigur Lunting Gang Teliga Susanansa
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टर्बाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-5, NJ-50 और NJ-100 शामिल है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को अधिक

0: developed to address critical requirements for indigenous defense technologies. Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar has said booth-level officers are the foundation of India's democracy. The Chief Election Commissioner is on a two-day visit to Uttar Pradesh, attended an interaction program with around 500 booth-level officers in Lucknow today. The program focused on making the electoral process more effective, transparent, accessible and citizen-centric. Defence Minister Rajnath Singh has approved the transfer of DRDO-developed technologies of all conventional missile systems to the Indian defence industry for production within the country. The initiative aims to enhance operational capability, reduce import dependence and increase domestic value addition. In men's cricket, host Sri Lanka were 265-8 against India in their first innings as reinforced early stumps on day 3 of the Colombo Test. Sri Lanka are trailing by 238 runs. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं पे आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय शाम के 7:10 हो गए हैं. लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता. इसमें आज आप सुनिए मोन्युल विद्या निकेतन तवांग के छात्र देवांग गोगाई से हिंदी में एक कविता. कविता का शीर्षक है सबसे पहले.
2: मेरा नाम देवांग गोगोई है. मैं कक्षा 5वीं का छात्र हूँ. मेरे विद्यालय का नाम है मोन्युल विद्या निकेतन तवांग. मेरे कविता का नाम है सबसे पहले. मेरे कविता का रचनाकार है हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन. सबसे पहले आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा हवा सवेरे की चलने पर हिल पत्तों का करना हर हर. देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले. आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा पौधे पौधे की डाली पर फूल खिले जो सुंदर सुंदर. देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले. आज उठा मैं सबसे पहले आज सुनूंगा चिड़िया का डेने फटका कर चहक चहक कर उड़ना फड़फड़. देखूंगा पूरब में फैले बादल पीले लाल सुनहले. धन्यवाद.
1: श्रोता भी आपने कविता पर आधारित कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत मोन्युल विद्या निकेतन तवांग के छात्र देवांग गोगोई से एक कविता सुना. कविता का शीर्षक था सबसे पहले. ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय शाम के 7:11 हो गए हैं. लीजिए श्रोता, पेशे कार्यक्रम एक ही फिल्म से. आज इस कार्यक्रम में आप सुनिए फिल्म आशिकी 2 से चंद नगमे. तो आइए श्रोता, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं पलक मुचल और अरिजीत सिंह की आवाजों में. इस गीत को बोल दिया है इशाद कामिल ने तथा संगीत दिया है जीत गंगुली ने.

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। संदीप नाथ के रचे गीत पर फिल्म आशिकी 2 से ही। इस गीत के गायक हैं अंकित तिवारी।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली स्थित श्रम शक्ति भवन में अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन, मेघालय के ऊर्जा मंत्री मेतबा लिंगदो और मिजोरम के ऊर्जा मंत्री एफ रोडिंग लियाना के साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख प्राथमिकताओं को सामने रखा, जिनमें केमिन में प्रस्तावित 132/33 केवी सबस्टेशन और इससे संबंधित LILO लाइनों का निर्माण शामिल है। उन्होंने कहा है कि ये परियोजना केमिन और आसपास के क्षेत्रों में वोल्टेज में उतार चढ़ाव, बिजली आपूर्ति बाधित होने तथा मौजूदा लंबित 33 केवी फीडर की सीमाओं की समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण रहेगा। श्री मेन ने अरुणाचल प्रदेश की बढ़ती जल विद्युत क्षमता और राज्य में आगामी बिजली परियोजनाओं पर भी प्रकाश डाला। बैठक में क्षेत्र की चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता से अवसंरचना के विकास तथा ग्रिड को मजबूत करने और बिजली आपूर्ति प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के विकास पर भी चर्चा की गई। इस बीच केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राज्यों को लागत के अनुरूप बिजली दरों को तर्कसंगत बनाने, ATNC यानी समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार को लेकर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। यह वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि यह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रस्तावित यात्रा से पहले हो रही है। अजीत डोवाल और वांग यी दोनों ही सीमा वार्ता तंत्र के नियमित विशेष प्रतिनिधि है। ये तंत्र वर्ष 2003 में भारत चीन के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान तलाशने के लिए स्थापित किया गया था। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT पारनायक रिटायर्ड ने ओणम के पूर्व संध्या पर राज्यवासियों, विशेष रूप से केरल के उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है जो राज्य में अपनी सेवा प्रदान कर विकास एवं प्रगति में योगदान दे रहे हैं। राज्यपाल ने कामना की है कि ये जीवंत पर्व प्रत्येक घर में सुख, उत्तम स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि लेकर आए। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि ओणम भारत की सबसे प्रिय फसल उत्सवों में से एक है, जिसे पूरे उत्साह और कृतज्ञता और सांस्कृतिक भव्यता के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कामना की है कि ओणम की भावना सभी के हृदय में आनंद का संचार करे, भाईचारे के बंधन को मजबूत बनाए और अधिक सौहार्दपूर्ण, समृद्धि एवं समावेशी समाज के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करने की प्रेरणा दे। दिवांगवेली उपायुक्त यशवंत मीणा ने आज अनिनी में दिवांगवेली जिले की जिला योजना समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना और जिला परिषद विकास योजना को तैयार करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने सभी पंचायती राज प्रतिनिधियों से कहा है कि वे लोगों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए बेहतर तालमेल, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। लोअर दिवांगवेली जिले के रोइंग DC कॉन्फ्रेंस हॉल में पंचायत राज संस्थाओं यानी PRI सदस्यों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल पर एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों, सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में जमीन स्तर पर भागीदारी को मजबूत करना था। कार्यक्रम में PRI सदस्य और विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों सहित लगभग 50 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। तवांग उपायुक्त नामग्याल अंगो ने आज पुलिस अधीक्षक तासी दारांग द्वारा लिखित कहानियों के संग्रह फायरसाइड टेल्स का विमोचन किया। ये पुस्तक स्थानीय कहानियों, संस्कृति और विरासत की समृद्धि का उत्सव है, जिसका उद्देश्य बहुमूल्य कथाओं और स्मृतियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना है। पुस्तक की भूमिका मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा लिखी गई है, जबकि इसका चित्रांकन मिच तारुंग द्वारा किया गया है। इस अवसर पर उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक के रचनात्मक प्रयास की सराहना की। पासीघाट स्थित अपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी द्वारा आज

0: Makhandu and has been illustrated by Mitch Tarung. Apex Professional University Pasighat organized an anti-drug awareness program under the Nasha Mukt Yuba for Viksit Bharat campaign at the university's Srushti Hall today. The program was organized in association with the Office of the Superintendent of Police, East Siang District, Pasighat. That is all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के टनागढ़ केंद्र से प्रसारित रीजनल न्यूज। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 7:55 हो गए हैं। लीजिए पेश है देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमे तराने। इसमें आज आप सुनिए अर्को के संगीत पर फिल्म केसरी से बी पारक की आवाज में एक देशभक्ति गीत।

श्रोता, अभी आपने देशभक्ति गीत का कार्यक्रम कौमे तराने में फिल्म केसरी से एक देशभक्ति गीत सुना। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोता, प्रस्तुत है कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत में आप श्रोता द्वारा व्हाट्सएप के जरिए फरमाइश किए गए चंद सदाबहार पुराने नगमों का। तो आइए श्रोता, कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं। नूरी फिल्म से लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के आवाजों में। इस गीत के रचयिता है जान निसार अख्तर तथा संगीत दिया है खय्यम ने। गीत की फरमाइश की है कोपरगांव से सुरेश मलोदे, वर्षा मलोदे और शिवगांव से राम गोंधाली और उषा गोंधाली ने।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश की है वरुण खेरा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोरा और मुरादाबाद धुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने। इनकी फरमाइश का गीत है फिल्म संगम से। इस गीत को गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने। गीत के रचयिता शैलेंद्र और अर्शद जयपुरी तथा संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

किशोर कुमार की आवाज में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का गायक गीत फिल्म कोरा कागज से। इस गीत को बोल दिया है एमजी हसमत ने तथा संगीत दिया है कन्यान जी अनंत जी ने। इस गीत की फरमाइश की है पत्नीटॉप के स्नापा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह और जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकास्टो, पीएल डिकास्टो, रोजी डिकास्टो और विलियस डिकास्टो ने।

उषा खन्ना के संगीत पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सौतन से। इस गीत के गायक हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर। गीत की फरमाइश की है मेरठ से दिग्दर्शन शाह गौर, कविता गौर और निमदवाद जिन हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर ने।

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम
1: आऊंगा।
2: श्रोता आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम में अंतिम फरमाइश का गीत, समीर के रचे बोल पर फिल्म आई मिलन की रात से अनुराधा पोटवाल और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। इस गीत की फरमाइश करने वाले हैं हम गांव से पेमा तशी, कर्मू छोटन, नाको, हम ड्रेमा, श्री याचिन और जम्मे छोटन।

गाना ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्म गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के वसा फरमाइश पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप भी सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक वसप जरूर करें। हमारा वसप नंबर है 6033-994-908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादोबारा कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब यहीं पर समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि 8:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्किन रात्रि 8:30 पर। तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज 8 रात्रि 9 बजे। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। शक्ति के साथ आज मैं हूं नवीन सक्सेना। शक्ति, आज किन खबरों के साथ अपने इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रखे हैं?
1: नवीन, आज डाली जाएगी नजर सबसे पहले क्रिकेट के मैदान पर, जहां कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई है और श्रीलंका पे फॉलो ऑन का खतरा बना हुआ है।
0: शक्ति, वहीं ईस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और नॉर्थ ईस्ट जोन को पारी से 210 रन से हरा दिया है। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपी

0: आज किन खबरों के साथ अपने इस कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रखे हैं?
1: नवीन, आज डाली जाएगी नजर सबसे पहले क्रिकेट के मैदान पर, जहां कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति काफी मजबूत हो गई है और श्रीलंका पे फॉल ऑन का खतरा बना हुआ है।
0: शक्ति, वहीं ईस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और नॉर्थ ईस्ट जोन को पारी से 210 रन से हरा दिया है। वहीं त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की स्टार भारतीय जोड़ी बैडमिंटन की विश्व रैंकिंग में 27वें स्थान पर पहुंच चुकी है। और
1: नवीन, अगर चेस की बात कर ली जाए तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं।
0: तो आज के इस अंक में इन चारों खबरों पर हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा खेल जगत की दुनिया में और क्या कुछ हो रहा है, इस पर भी हम आपको बताते चलेंगे। शक्ति, कोलंबो में भारत की स्थिति जो है अब आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में मजबूत होती हुई नजर आ रही है। श्रीलंका ने तीसरे दिन का आज खेल समाप्त होने पर पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। दिन के खेल के समापन के समय दिनुषा 85 और लाहिरी कुमारा 8 रन बनाकर क्रीज पर थे।
1: वहीं पर नवीन, श्रीलंका को अभी भी फॉल ऑन टालने के लिए 39 रन की दरकार है। हालांकि आज के खेल में सबसे बड़ी चीज उनके लिए यही रही कि पसिंदू सूर्या बंदारा ने 80 रन की शानदार पारी खेली और काफी हद तक पारी को आगे बढ़ाया। भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। इस तरह से श्रीलंका अभी भी भारत से 238 रन पीछे है। आइए पहले सुनते हैं आज के दिन के खेल पर ये रिपोर्ट।
2: भारतीय गेंदबाज सोनल दिनुषा की अगुवाई में श्रीलंका के पुछल्ले बल्लेबाजों के संघर्ष को खत्म करने में नाकाम रहे। इससे बारिश और खराब रोशनी के कारण आज तीसरे दिन का खेल जल्दी समाप्त होने तक मेजबान श्रीलंका ने 8 विकेट खोकर 265 रन स्कोर बोर्ड पर लगा लिए थे। श्रीलंका ने आज 2 विकेट पर 8 रन से आगे खेलना शुरू किया और पहले सत्र में 122 रन जोड़े। बारिश के कारण देर से शुरू हुए दूसरे सत्र में मेजबान टीम ने 3 विकेट गंवाते हुए 86 रन और जोड़े। चायकाल तक 7 विकेट पर 216 रन के स्कोर से आगे खेलते हुए श्रीलंका के जल्दी सिमटने के आसार दिख रहे थे। दिनुषा ने हालांकि लगातार तीसरी पारी में 50 से अधिक रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों को परेशान किया। उन्होंने केशारा नुवांता के साथ 8वें विकेट के लिए 57 रन जोड़े और लाहिरू कुमारा के साथ 9वें विकेट के लिए अब तक 35 रन की अटूट साझेदारी की। दिनुषा दिन का खेल समाप्त होने तक 85 रन बनाकर नाबाद थे। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 विकेट, जबकि रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने 1-1 विकेट लिया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: शक्ति, इस मैच में एक बार फिर हम सबकी उम्मीदें जो थी वो मानव सुथार पट्टी के हुई थी, लेकिन इस बार वो कुछ खास नहीं कर पाए। हालांकि 21 ओवर उन्होंने फेंके हैं जिसमें उन्होंने 83 रन दिए और 3 विकेट हासिल किए। वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 3 विकेट हासिल किए हैं, लेकिन जहां एक तरफ ऐसा लग रहा था कि जब शुरू के 3 विकेट जल्दी जल्दी गिर गए थे श्रीलंका के, तो लग रहा था कि शायद भारतीय टीम जो है इन्हें और जल्दी समेट लेगी, लेकिन पसिंदू सूर्या बनंद्रा उन्होंने 80 रन का जो योगदान दिया और साथ में इस समय जो बैटिंग कर रहे हैं दिनुषा 85 रन पर, उन्होंने भी बेहतर योगदान देते हुए श्रीलंका को एक अच्छी स्थिति में, अगर उनके हिसाब से कहें एक बेहतर स्थिति में ला दिया, और भारत के हिसाब से कहें तो शायद वो उन्हें हमें फॉरवर्ड की दरकार की तरफ ले चलेंगे।
1: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा नवीन, क्योंकि जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी ने एक वक्त पे अपना अटैक कायम किया था, कह सकते हैं कि श्रीलंका के बल्लेबाजों से अधिक इस गेंदबाजी को किसने परेशान किया है तो वो है इस मैदान में बारिश ने, जिसने लगातार खलल डाला और उस रिदम को तोड़ने का काम किया है। आपने मानव सुधार का जिक्र किया, अपना तीसरा मैच ये खिलाड़ी खेल रहा है, आज 5वीं पारी और 20 विकेट ले चुका है, तो कह सकते हैं मोमेंटम में है। उम्मीद है कल भारतीय गेंदबाजों की मनोस्थिति बिल्कुल स्पष्ट होगी, जल्दी से जल्दी टीम को ऑल आउट किया जाए और फॉल ऑन देकर के आगे भारत किस तरह से अपनी रणनीति को आगे बढ़ाता है मैच को।
0: शक्ति, भारतीय गेंदबाजी पर अगर हम एक नजर डालें तो एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद जो भारतीय स्पिनर हैं वो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विकेट्स आप देखेंगे तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी 3 विकेट मिले और मानव सुथार को भी 3 ही विकेट हासिल हुए हैं। इसका सीधा सीधा असर यह है कि कल कोई भी गेंदबाज अच्छा फायदा उठा सकता है, क्योंकि आज बारिश रही है जिसमें लगातार खेल में रुकावट पैदा की है और कल सुबह जब खेल आरंभ होगा तो कोशिश रही रहेगी कि जल्दी से जल्दी श्रीलंका को पवेलियन भेजा जाए।
1: जी बिल्कुल, इसी पे नजर होगी और किस तरीके से इस मुकाबले के साथ साथ एक अच्छी शुरुआत टेस्ट में हो अफगानिस्तान के बाद एक और क्लीन स्वीप की तरफ भारत बढ़ता हुआ नजर आए।
0: कल उम्मीद है कि पंत को मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि आज जो तीसरे दिन उन्होंने विकेट की पिक नहीं की और उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने यह जिम्मेदारी संभाली थी, क्योंकि उनके कंधे पर जो है वो चोट लगी हुई थी। और उम्मीद करते हैं कि कल जब खेल आरंभ होगा और जब तक खेल प्रेमी अपने टीवी को ऑन करेंगे या क्रिकेट कमेंट्री सुनेंगे तब तक जो है पवेलियन में जा चुकी

0: होगी श्रीलंकाई टीम और उम्मीद है कि भारत इस टेस्ट मैच को कल ही समाप्त करने की कोशिश करेगा। वही बात करते हैं दिलीप ट्रॉफी की। ईस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। बेंगलुरु में क्वार्टर फाइनल में शाहबाज अहमद के शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन की बदौलत ईस्ट जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ पारी और 210 रन से जीत हासिल की है। सेमीफाइनल में अब ईस्ट जोन का मुकाबला सेंट्रल जोन से होगा। यह मैच 30 अगस्त को खेला जाएगा और शक्ति ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और उम्मीद की जाती है कि इस टूर्नामेंट के बाद ही जो है कई खिलाड़ियों को भारतीय क्रिकेट टीम में खासकर क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में आने का अवसर मिलता है। और अगर हम बात करें अगर आईपीएल को इससे कंपेयर करें तो आज भी मुझे लगता है कि अगर मानव सुथार जैसे खिलाड़ी बिना आईपीएल में शिरकत किए हुए या बिना आईपीएल में अपना जलवा दिखाए हुए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हो सकते हैं तो ऐसी दिलीप ट्रॉफी जैसे जो हमारे घरेलू टूर्नामेंट है उसमें से भी कई खिलाड़ी निकलकर हमारी टीम में आ सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। आईपीएल एक तरफ जहां पे ग्लैमर से भरपूर टी20 का रोमांच है, दूसरी तरफ रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, आपने मानव सुथार का जिक्र किया, अभी इसके पहले रणजी ट्रॉफी संपन्न हुई, आकिब नवी एक स्टार के रूप में उभरे हुआ पूरा देश पूछ रहा था, तो आप ये अनुमान लगाइए कि आईपीएल में भी खिलाड़ियों को जो चुना जा रहा है उसके लिए एक पैमाना दिलीप ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी बनते हुए नजर आ रही है।
0: जी और घरेलू क्रिकेट से अगर आप खिलाड़ी चुनकर लेकर आते हैं तो लगता है कि हमारे पास अभी वो खिलाड़ी बचे हुए हैं जो एक क्लासिक क्रिकेट खेलते हैं, ना कि सिर्फ आईपीएल का सिर्फ गेंद और जिसमें सिर्फ बॉलर बॉल ही डाल रहा है और लगातार सिर्फ उसे बाउंड्री का तरफ ही अपना रुख करना पड़ता है क्योंकि हर गेंद जो है दर्शक भी चाहते हैं कि हर गेंद बाउंड्री के पार हो, लेकिन अगर आपको क्लासिक खेल देखना है तो आपको घरेलू क्रिकेट को थोड़ा और बढ़ावा देना पड़ेगा। नजर कर लेते हैं उधर दूसरे मैच में, दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुशीर खान और ऋतुराज गायकवाड़ के शानदार अर्धशतक की बदौलत वेस्ट जोन दिलीप ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल में मजबूत स्थिति में पहुंच गया था, लेकिन नॉर्थ जोन ने लगातार विकेट चटकाकर तीसरे दिन के मुकाबले में वापस कर लिया है अपने आप को।
1: जी बिल्कुल, और जीत के लिए 287 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पश्चिम क्षेत्र की टीम एक समय अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 195 रन पर थी नवीन, और आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। हालांकि कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 70 गेंदों पर 66 रन की एक पारी खेली लेकिन वो आउट हुए और वेस्ट जोन अभी भी जीत से 67 रन दूर है, लेकिन चिंता की बात यह है कि महज 3 विकेट हाथ में है।
0: जी क्रिकेट प्रेमियों के लिए कल का दिन बेहद रोमांच से भरपूर रहेगा, आपकी नजर दिलीप ट्रॉफी पर भी रहेगी और कोलंबो में तो हम आपको एक ऐसा मैच देखने की हम लोग कोशिश करेंगे जहां भारत जो है जीत की ओर अग्रसर होगा। क्रिकेट के मैदान के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं बैडमिंटन स्टेडियम की ओर जहां BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की स्टार भारतीय जोड़ी BWF की ताजा रैंकिंग में 12 पायदान ऊपर पहुंचकर पई है और ये स्टार महिला डबल्स के 39वें स्थान पर था और अब 27वें स्थान पर आ गया। बेहतर खेल का प्रदर्शन किया त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने। अगर हम ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा के बाद अगर हम किसी जोड़ी को देखते हैं शक्ति तो यही एक जोड़ी नजर आती है और इससे उम्मीदें भी करी जा रही हैं कि भविष्य में ये जोड़ी और बेहतर खेल दिखाएगी और रैंकिंग के साथ साथ अगली बार हमारे को एक पदक और ऊपर मिलने की कोशिश
1: होगी। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि पदक का रंग और बेहतर चमक बिखेरता हुआ नजर आएगा और भारतीय बैडमिंटन में किसी नए तारे की तरह ये जोड़ी चमकते हुए नजर आ रही है। नवीन एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगा, जो 25 अगस्त का दिन है और आज ही के दिन आज से 7 साल पहले पीवी सिंधु ने पहली बार BWF विमेंस सिंगल्स का खिताब जीता था, तो एक महत्वपूर्ण दिन है और उस दिन एक महत्वपूर्ण और उपलब्धि इस महिला डबल्स जोड़ी ने जोड़ी है।
0: अश्विनी पोनप्पा और ज्वाला गुट्टा के बाद शक्ति ऐसा लगता था कि शायद महिला डबल्स में कोई भारतीय जो, हालांकि भारतीय जोड़ी पनप भी नहीं पा रही थी, बहुत बेहतर खेल का प्रदर्शन नहीं कर रखे थे, लेकिन जिस तरह से इस जोड़ी ने उम्मीदें जताई हैं, मेडल की उम्मीदें जताई हैं और लगातार जिस तरह से इन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है उससे लगता है कि भारतीय जोड़ी भविष्य के अंदर एक अच्छे सितारे के रूप में चमकेगी।
1: और अब बात की जाए शतरंज की जहां भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ग्रैंड चेस टूर के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका के सेंट लुइस में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में प्रज्ञानानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया।
0: प्रज्ञानानंदा ने क्लासिकल और रैपिड गेम के बाद ही फाइनल में जगह पक्की कर ली थी और इसके बाद खेले गए 3 ब्लिट्स गेम हारने के बावजूद उनके कुल स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ा और आज खिताबी मुकाबले में प्रज्ञानानंदा का सामना मौजूदा चैंपियन अमेरिका के फैबियानो कारुआना से होगा। और अब बात खेलो इंडिया स्कीम की। युवा कार्य और खेल मंत्रालय के सचिव हरि रंजन राव ने कहा है कि स्कूल के पाठ्यक्रम में खेल को शामिल करना कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी हमारी व्यवस्था का हिस्सा रहा।

0: है। श्री राव ने संवाददाताओं से कहा कि हम पाठ्यक्रमों में खेल को वापस लाने का काम कर रहे हैं।
1: Integration of sports in schooling curriculum is not something new to our nation. Gradually, I think we have moved on and there has been some shift in the alignment and priorities. I will not be able to give a timeline, but I would like to get it done as early as possible. Simply because if every child in the school is able to go to the playground and play, I think that will help the country in a very transformative manner to become a good sporting nation.
2: इस अवसर पर श्री राव ने यह भी कहा कि खेलो इंडिया की नई स्कीम के माध्यम से हम कई स्तर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और जिलों के स्तर पर ज्यादा प्रतियोगिताएं और लीग शुरू करना अधिक बच्चों और खिलाड़ियों के लिए स्पोर्टिंग इकोसिस्टम से जोड़ने का काम करेगा।
1: In the new scheme of Khelo India, revamped scheme, we are now working on multiple layers. So one is to introduce more competitions and leagues at the level of schools, districts, universities, colleges, which will actually engage more number of children and athletes in sporting ecosystem, as well as they will get more opportunity to continue to play. Secondly, we are also thinking in terms of having Khelo India Utkrisht Vidyalay. These will be already existing schools, but they would have a very heavy focus on good quality sporting training program, and we'll have Khelo India feeder schools. Feeder schools will be able to feed talented athletes and budding students into the sporting ecosystem.
0: और अब आपको लिए चलते हैं टेनिस के मैदान की ओर। न्यूयॉर्क में सीजन के आखिरी टेनिस ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का आगाज क्वालिफायर मुकाबलों के साथ हो चुका है, जहां कम रैंकिंग वाले खिलाड़ी मेन ड्रॉ में पहुंचने के लिए क्वालिफाइंग राउंड पार करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और शक्ति, हम अपने सुनने वालों को बता दें कि चार ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। यूएस ओपन आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है, जो आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच में खेला जाता है और ये हार्ड कोर्ट टूर्नामेंट होता है।
2: जी बिल्कुल, और जितना खास ये टूर्नामेंट है उतनी ही खास इसकी इनामी राशि होती है। सभी इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए कुल 108 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इनामी राशि रखी गई है नवीन, जिसमें पुरुष और महिला सिंगल्स चैंपियन को $5.5 मिलियन मिलेंगे। तो आज जानते हैं कि टेनिस की दुनिया के इस रोमांचक टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स में इस बार कैसी टक्कर देखने को मिलेगी।
3: ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से कार्लोस अल्कराज और यानिक सिनर ने किसी बड़े टूर्नामेंट में एक साथ हिस्सा नहीं लिया है। मौजूदा चैंपियन अल्कराज ने यूएस ओपन में वापसी की पुष्टि की है, जबकि दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर टूर्नामेंट से हट गए हैं। 2008 में रोजर फेडरर के बाद से किसी भी पुरुष खिलाड़ी ने सिंगल्स का खिताब सफलतापूर्वक डिफेंड नहीं किया है। 23 वर्षीय कार्लोस अल्कराज जीत के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। अब नंबर वन सीड अलेक्जेंडर ज्वरेव होंगे, जो पिछले दो ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचे हैं और फ्रेंच ओपन में जीत हासिल कर चुके हैं। ओलंपिक चैंपियन नोवाक जोकोविच भी इस मौके का फायदा उठाना चाहेंगे। राफेल जोडर और लर्नर टियन जैसे युवा खिलाड़ी अगर टूर्नामेंट में आगे तक जाते हैं तो टॉप 10 में जगह बना सकते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन के रनर अप फ्लेवियो कोबोली भी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्टैंड।
2: नवीन, 30 तारीख से इस महीने की मेन ड्रॉ शुरू हो जाएंगे, कितनी उम्मीदें इन खास खिलाड़ियों से होंगी? स्टार्स हमेशा फेवरेट होते हैं।
0: उम्मीद करते हैं कि हम अपने तमाम उन खिलाड़ियों को जो हमारे फेवरेट हैं, अल्कराज को हम खेलता हुआ देख पाएंगे और ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और विंबलडन, क्योंकि ये एक आखिरी लास्ट ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है, तो हर कोई खिलाड़ी इसको जीत के साथ इसको अपने इस सीजन के एंड को इसको करने की कोशिश करेगा। और अपने सुनने वालों को हम एक बार फिर बता दें कि विंबलडन 1877 में शुरुआत हुई थी और यूएस ओपन जो था 1881 में, एक क्रोनोलॉजी है शक्ति, फ्रेंच ओपन 1891 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था। 30 अगस्त से इस प्रोग्राम की या यानी कि इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाएगी और हमारी नजर उस पर लगातार रहेगी। स्पोर्ट्स स्कैन में हम लगातार आपको ताजा तरीन जानकारी देते रहेंगे। बहरहाल, अब वक्त हमें बिल्कुल इशारा नहीं कर रहा है कि हम इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की स्थिति मजबूत हो चुकी है। श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा है।
2: जी बिल्कुल, और ईस्ट जोन की टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है दिलीप ट्रॉफी के। नॉर्थ ईस्ट जोन पर पारी और 210 रन की जीत बनाते हुए।
0: आज के अंक में बस इतना ही, मुझे यानी नवीन और शक्ति को जी इजाजत। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा, दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल

0: भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से $200 अरब की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: आज दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे होना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: सीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
6: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा।

0: ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए डीआरडीओ के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय एमएसएमई और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
2: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
3: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधाननगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में

0: लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 पैसे पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का 1 दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए DRDO की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am VC Pramod with the news at 9. The headlines. UPI completes a decade making India a global leader in digital payments with world's largest